रेडियो विदिस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदिस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 12। आज का कार्यक्रम आधारित है गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पर। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.0 FM रेडियो वितस्ता और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। पेश है वो कार्यक्रम जो आपकी यादों में सबसे मीठे पल घोल देता है, यानी कि सुनहरे पल। आज का ये प्रोग्राम एक ऐसी हस्ती के नाम है जिनकी आवाज ने पीढ़ियों को प्यार करना, खुश होना और जिंदगी जीना सिखाया। 40,000 से ज्यादा गाने, 16 भाषाएं, 6 नेशनल अवार्ड्स। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SP बालासुब्रमण्यम, यानी हमारे सबके प्यारे बालू सर की। आज हम उनके बचपन की मासूमियत से लेकर संगीत के समंदर में उनके अद्भुत सफर तक चलेंगे। उनका जन्म 4 जून 1946 को नेलोर, आंध्र प्रदेश में हुआ। घर में संगीत का माहौल था क्योंकि पिता SP साबरमती एक जाने माने हरि कथा कलाकार थे। अजीब बात ये थी कि संगीत उनके खून में था, फिर भी बालू सर इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को एक आवाज का इंजीनियर मंजूर था। कॉलेज के दिनों में ही सिंगिंग कंपटीशन में जीत का सिलसिला शुरू हुआ और 1966 में तेलुगु फिल्म श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना से एक युग की शुरुआत हुई। आइए उनके उस सफर को याद करते हुए सुनते हैं वो गीत जिसने उनको पूरे भारत का चेहरा बना दिया।

ये आवाज का जादू। ये गाना सिर्फ हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री नहीं थी बल्कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पहला नेशनल अवार्ड भी था। दोस्तों, बालू सर को गाना गंधर्व कहा जाता था। ये नाम यूं ही नहीं मिला, वो हर जोन में माहिर थे। एक तरफ शंकराभरणम में शास्त्रीय संगीत की कठिनता, तो दूसरी तरफ मैंने प्यार किया में पॉप की चंचलता। उनकी सबसे बड़ी खूबी, उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी अलग अलग भाषाओं में नेशनल अवार्ड जीते। ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। और केवल गाना ही नहीं, उन्होंने 45 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, कई फिल्मों का संगीत निर्देशन किया और यहाँ तक कि सलमान खान, कमाल हसन और रजनी के लिए डबिंग भी की। एक इंसान, प्रतिभाएं अनेक। सुनते हैं उनकी आवाज का वो रूप जिसने सिद्ध कर दिया कि वह शास्त्रीय और सुगम संगीत के बीच की दूरी को मिटा सकते हैं।

अद्भुत। इस गाने को सुनकर ही एसपीबी सर के गायन की गहराई महसूस होती है। अब चलते हैं 90 के दशक में, जब एक युवा संगीतकार एआर रहमान अपनी धुनों से दुनिया को बदल रहे थे। इस बदलाव में भी बालू सर की आवाज पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक खूबसूरत पुल बन गई। और उस दौर में एक शानदार संगम था बालू सर की आवाज और रहमान का संगीत, और उन दोनों की जुगलबंदी युवा पीढ़ी पर ऐसी छा गई कि वो उनका गाया हुआ गाना आज भी लोगों के दिलों में राज करता है।

दोस्तों, बालू सर के हिंदी सिनेमाई सफर की बात हो और सलमान खान की बात ना हो तो ये सफर अधूरा है। 90 के दशक में बालू सर की मासूमियत और मीठी आवाज सलमान खान के लिए रोमांटिक पहचान बन गई। ये जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि हर दूसरी फिल्म में उनकी आवाज जरूरी हो गई। इन गानों में से एक साफ भोलापन था जो आज भी हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। पेश है उनकी सबसे बड़ी रोमांटिक सफलता जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला।

एस पी बालासुब्रमण्यम अपने पहले गुरु संगीत निर्देशक एस पी कोंडांडपानी को बहुत सम्मान देते थे। उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा था। उनका सबसे सफल और अटूट बंधन संगीतकार इलैयाराजा के साथ रहा। इन दोनों की जोड़ी ने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा को कई यादगार क्लासिकल दिए। इसके अलावा उन्होंने केवी महादेवन और एमएस विश्वनाथ जैसे दिग्गज संगीतकारों से लेकर एआर रहमान तक हर पीढ़ी के संगीतकार के साथ काम किया। उनकी आवाज की अनुकूलन क्षमता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी।

रिकॉर्डिंग के मामले में एसपीबी की गति और क्षमता पौराणिक थी। उन्हें संगीत जगत में उनकी अविश्वसनीय गति के लिए जाना जाता था। उन्होंने एक दिन में 21 कन्नड़ गाने, 19 तमिल गाने और 16 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए थे। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, उन्होंने रिकॉर्ड समय में भी गानों की गुणवत्ता और भाव को कभी कम नहीं होने दिया। उनकी ये पेशावर क्षमता उन्हें किसी भी स्टूडियो के लिए सबसे पसंदीदा गायक बनाती थी।

ये तथ्य अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित करता है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम ने औपचारिक रूप से शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके बावजूद उन्होंने शंकर भ्रमण और सागर संगमम जैसे फिल्मों में जटिल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए। उन्होंने खुद को फिल्म संगीत का गायक बताया, जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शास्त्रीय ज्ञान का उपयोग करता है। ये उनकी सहज प्रतिभा और गहन आत्म अध्ययन का प्रमाण था कि वो बिना औपचारिक प्रशिक्षण के भी शास्त्रीय गीतों को महारत हासिल कर सके।

गायक और अभिनेता होने के अलावा एसपी बालासुब्रमण्यम एक सफल टेलीविजन करियर भी बनाया। वह तेलुगु सिंगिंग रियलिटी शो पड़ोथा थियागा के होस्ट थे, जो भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला रियलिटी शो में से एक है। इस शो के माध्यम से उन्होंने न केवल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि एक दयालु संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में अपनी छवि को मजबूत किया। दक्षिण भारत में उनकी होस्टिंग ने उन्हें हर घर का चहेता बना दिया।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विथस्ता। इस टाइम जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल और आज के गायक है एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया था, पद्मश्री 2001, पद्म भूषण 2011 और मरणोपरांत पद्म विभूषण 2021। उन्होंने कुल 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अनगिनत राज्य स्तरीय पुरस्कार जीते। 25 सितंबर 2020 को कोविड-19 की जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन अपनी गायकी के माध्यम से वो भारतीय संगीत की एक अमिट विरासत छोड़ गए। उनकी आवाज जो क्लासिकल से लेकर पॉप तक हर तरह के भाव को छूती थी, पीढ़ियों तक श्रोताओं को प्रेरित करती रहेगी। कोविड-19 के दौरान उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी, जो दर्शाता है कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक प्यारे इंसान थे जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। कोविड-19 के कारण संगीत का ये समंदर शांत हो गया, एक ऐसी क्षति जिसे भारतीय संगीत कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आवाजें मरती नहीं, वो अमर हो जाती है। बालू सर के गाने हमेशा हमारे सुनहरे पल बनकर रहेंगे। आइए उनकी याद में उनकी आवाज का एक और अनमोल रत्न सुनते हैं।

अब आज के सुनहरे पल के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं दोस्तों। एसपी बाला सुब्रमण्यम सर एक आवाज नहीं थे, वो तो एक पूरा दौर थे। उनका 40,000 गानों का सफर हमें सिखाता है कि अगर कला दिल से की जाए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। उनकी आवाज हमेशा हमारी यादों में गूंजती रहेगी। बालू सर को हमारा अंतिम प्रणाम और भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसके साथ ही मैं किरणी आप सभी श्रोताओं से चाहूंगी इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए सफर में, किसी नए कार्यक्रम में, किसी और सुरीली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। सभी श्रोताओं को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 12। आज का एपिसोड आधारित था गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पर। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोटल में नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई होगी जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। दोस्तों, लघु कथाओं की श्रृंखला में आज मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूं श्री कुणाल शर्मा जी द्वारा लिखित एक लघु कथा जिसका शीर्षक है कुर्बानी। विद्यालय में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा था। मुख्य अतिथि के भाषण के पश्चात सभी प्रतिभागी बच्चों को रिफ्रेशमेंट के लिए लाइनबद्ध कर रहे थे। एक एक करके सभी को मीठे दूध की बोतलें बांटी जा रही थी। भाई, कोई बच्चा दोबारा लेने मत आए, और हाँ, लाइन मत तोड़ो। अध्यापक का हिदायत भरा स्वर हॉल में गूंजा और एक बच्चा सभी वर्दीधारी बच्चों की पंक्ति में अलग ही चमक रहा था। गहरे लाल रंग की कमीज घुटनों को छू रही थी और मैली कुचैली सी पैंट और पांव में बेमेल काले जूते। पहले अध्यापक उसको दूध की बोतल दे चुके थे। जाहिर था वो फिर से लाइन में लगा था। अरे, अभी तो दूध की बोतल लेकर गया था, फिर से लाइन में लग गया। चल भाग यहां से, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा, अध्यापक ने कड़क लहजे में उसे कहा। वो सहमा हुआ सा हाल से बाहर निकल गया। रिफ्रेशमेंट बांटकर एडजस्टमेंट पीरियड में नौवीं कक्षा में जब अध्यापक गए तो उनकी नजर फिर से उस बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा पैंट की जेब में कुछ डाल रहा था। क्यों बे, तेरी वर्दी कहाँ है और ये जेब में क्या डाल रखा है? बड़ी तलखी से अध्यापक ने उसको पूछा। कुछ नहीं सर, वो घबराते हुए बोला। निकाल बाहर, जेब में क्या है, वरना एक थप्पड़ पड़ेगा। उसने सहमते हुए जेब से दूध की बोतल निकाली ही थी कि अध्यापक उस पर बरस पड़ा। तू हेरा फेरी करके दूसरी बोतल ले ही आया ना? नहीं सर, ये मेरे वाली ही है। झूठ बोलता है, तेरे वाली है तो अभी तक पी क्यों नहीं? सर, आज मेरा जन्मदिन है, ये बोतल माँ को पिलाऊंगा। जब से पापा गए हैं ना, माँ ने कभी दूध नहीं पिया। उसका ये जवाब सुनकर अध्यापक के शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। और हाँ, अगर आप भी कहानी लिखते हैं और आपकी कहानी भी मौलिक है तो आप अपनी कहानी हमें भेजिए। हम उस कहानी का स्तर देखने के पश्चात यदि वह प्रसारण के योग्य होगी तो अवश्य उसको आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।

0: ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
1: नमस्कार, आज का जो ललवाक है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इनसाइट से भरा हुआ ललवाक है ललित का, और हमारे आज के इस जीवन के दृष्टिकोण में इसकी बड़ी महत्वता है। कश्मीरी में ये ललवाक बोलता हूँ, नावद बरस अटगंट डुलगो, नावद बरस अटगंट डुलगो, देह कान हुलगो, हाय क्या क्यों, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, हलरस खोल गोम, हाय क्या क्यों। अब ये देखिए, इसमें नावद बरस अटगन डुलगोम की बात करती है। नावद मतलब कश्मीरी में जैसे मिठाई कहते हैं, मीठा कहते हैं, मिश्री कहते हैं, तो ललदेत मिश्री को का एक मेटाफर यूज करती है। वो कहती है कि जो दुनिया की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये दुनिया की इच्छाएं आकांक्षाएं सुख जिसका हम भोग करना चाहते हैं मिठाई के समान है, और ये मिठाई की लालसा हम सबको होती है, क्योंकि मीठे की एक बार आदत लग जाए तो आदमी का मन हमेशा अतृप्त रहता है और मीठा चाहता है, क्योंकि पहले ये मीठा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये मीठा और आना शुरू कर देता है तो ये जीवन में एक बोझ के समान हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता ये बोझ कब बन चुका होता है, क्योंकि लालसा ने हमारी आंखें अंधी कर दी होती है, हमें दिखता ही नहीं है। हम हर चीज चाहते हैं, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज मिलनी चाहिए। तो ललदेत इन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को इस मिठास से जोड़ती है और कहती है कि ये जो इच्छाएं हैं ये बड़ा बोझ क्रिएट कर देती है हमारे ऊपर, और फिर कहती है कि देह कान हुलगोम, भाई क्या कि हो, मतलब फिर ये बोझा इतना भारी हो जाता है हम पर कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जिस चीज के लिए मैं इस जीवन में आया हूं, वो चीज मुड़ना शुरू हो जाती है, वो चीज उस भार के नीचे दब जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और फिर कहती है, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि तो उस दिशा की ओर चल, उस परमात्मा को खोजने चल। मुझे वो दिशा अच्छी तो लगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे इस दुनिया से अपने आप को खींचना है बाहर। अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ देह है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है, फलरोस खोलगोम, हाय क्या कि हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ू या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रूजिव पनिन पसंदीद बगत।

तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे। मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख

उस गांव की गलियों से जब जब तू गुजरा होगा, चांद भी आसमां से तुम्हें देखने को उतरा होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जा जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जा जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा।

बहार गजल आप सुन रहे हैं रमेश मराठा के साथ। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज़्म तन्हाई में छेड़ा जब तेरी यादों ने। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज़्म तन्हाई में छेड़ा जब तेरी यादों ने।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

छूता हूँ, खुशबू को ढूंढता हूँ, पानी को पकड़ता हूँ, रूहों से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। टिमटिमाते सितारों की करवटों में शबनमी बूंदों की रंगोली से इंद्रधनुषी बंटवारे की लकीरें खींच लेता हूँ। आसमां से नजरें मिलाता हूँ, चांद को निहारता हूँ, सुनसान राहों को तन्हा रातों में तकता रहता हूँ। चांदनी रातों में अपने ही साए से लिपट जाता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, सच में मैं पागल हूँ। गुप अंधेरों में खुद के साथ सफर करता हूँ, भटके परिंदों की रहनुमाई करता हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ।

ख्वाबों की ताबीर हो, इंद्रधनुषी मौसमी बारिश हो, जिंदगियों में बहारों की बौछार हो, समय को ठहरने की इजाजत हो, चाहतों में चुंबक जैसी जुम्बिश हो। सांसों की गर्माहट में होंठों की कपकपाहट हो, इन कदमों की आहटों में पुनर्जन्म का एहसास हो, आशियानों में लगी आग हो, टूटे आईनों में बिखरती तस्वीरें हो, लेकिन सिर्फ तुम मेरे ख्वाबों में हो, मेरे ख्वाबों की।

मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम अभी लुप्त हो चुका है और दरियाओं की रवानी थम चुकी है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही शायद तुम लौट आओ मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए।

लेती है खुशियों से दामन, अपने साथ कहीं दूर तक ले जाती है, गगन के उस पार अपनी मुस्कुराती दुनिया में, जहां फरिश्ते राहों में सजदा करते हैं, जहां यकायक फूलों की बारिश होती है, जहां चांद सितारे हमारे पांव छूने में गुरेज नहीं करते हैं, जहां रूह रक्स करती है और जिस्म प्यार का इजहार।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। आदाब।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, साज और आवाज इस श्रृंखला को लेकर आज फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूं और हमारी आज की मेहमान हैं सुप्रसिद्ध गायिका नुपुर सिंह। आज के हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक है वो दिल कहां से लाऊं। इससे पहले कि हम नुपुर जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आइए मैं आपको नुपुर जी के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। नुपुर जी का जन्म 19 अगस्त 1976 को बिहार के मुजफ्फरपुर में गणित के प्राध्यापक श्री वैद्यनाथ चौधरी एवं शिक्षाविद श्रीमती मीरा चौधरी के घर पर हुआ। आपने 5 वर्ष की आयु से ही श्रीकांत पोद्दार, श्रीमती ब्रिजबाला देवी एवं श्री श्यामलाल मिश्रा जी से विभिन्न घरानों की विधिवत संगीत शिक्षा लेनी प्रारंभ की। नूपुर जी ने रसायन शास्त्र में स्नातक किया और संगीत में एमए करने के बाद पद्मभूषण पंडित राजन मिश्रा तथा पंडित साजन मिश्रा से संगीत की शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी, जो अभी तक जारी है। विश्व विख्यात संगीतज्ञ पंडित ज्वाला प्रसाद जी के सानिध्य में आपने कई प्रोजेक्ट किए और अभी हाल में मार्च 2019 में आपको भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मॉरिशस भेजा गया। म्यूजिक में 2008 में आपने बिहार यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया और 2010 से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में संगीत की शिक्षा दे रही हैं। नूपुर सिंह अनेकों बार अवार्ड्स से नवाजी गई हैं। इनको राजकीय एवं प्राइवेट संस्थानों से इतने इनाम और सम्मान प्राप्त हुए हैं जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर मैं वो फहरिस्त आपको गिनाने लग जाऊं तो इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा समय उसी के बीच में लग जाएगा। तो फिलहाल नूपुर सिंह जी अपने पति श्री राकेश सिंह, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के बीच में कंट्री हेड की हैसियत से काम करते हैं, और अपने 2 बच्चों दिव्यानिका वत्स और कैवल्या वत्स के साथ दिल्ली में निवास करती हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं नूपुर सिंह की कहानी उन्हीं की जुबान। नूपुर जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: रेडियो विचस्ता पर आपका हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: नूपुर जी, जैसा कि इस कार्यक्रम का शीर्षक है कि वो दिल कहां से लाऊं, तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है कि आप इस गीत की कुछ लाइनें हमारे श्रोताओं को सुनाएं, फिर इसी गीत को हम संगीत के साथ आपकी आवाज में सुनेंगे और हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।
1: जी बिल्कुल।
2: वो दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहां से लाऊं,

0: कपूर जी, एक बात मैं जानना चाहता था आपसे कि आपने रसायन शास्त्र में स्नातक किया है
1: जी,
0: और एमए के लिए आप फिर से संगीत के क्षेत्र में मुड़ गई
1: जी।
0: क्या रसायन शास्त्र का विषय कठिन लगा या इसीलिए आपने ये परिवर्तन किया है?
1: नहीं, ये चेंज आया था मेरी लाइफ में कुछ अलग तरीके से
0: जी,
1: क्योंकि मुझे साइंस में भी बहुत रुचि थी, बहुत स्टडी में अच्छी भी थी। तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ, साथ में मेरा म्यूजिक भी चल रहा था, बचपन से ही सीखा मैंने एक गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू
0: जी।
1: तो उस वक्त क्या हुआ कि जब चेंजिंग हो रही थी बहुत सारी चीजें, तो मेरे माता पिता ने मुझसे पूछा कि तुम अपना किस दिशा में तुम ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट है, ये भी सोच लेना। तो मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में भी था और साइंस की तरफ भी था, लेकिन एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे म्यूजिक में ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अदर सब्जेक्ट को लेकर करियर में लेती हूँ तो मेरा म्यूजिक शायद मैं उतना नहीं कर पाऊंगी, उसको ध्यान नहीं दे पाऊंगी। तो यही वजह थी कि मैंने उसको आगे कंटिन्यू किया म्यूजिक को लेके, और फिर उसके आगे की स्टडी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थी, फिर यहीं से स्टडी मैंने आगे की कंटिन्यू की।
0: बहुत खूब नुपुर जी, आप ये बताइए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गीत रेडियो विचस्ता के श्रोताओं को सुनाना पसंद करेंगी?
1: पसंद के तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन जो मुझे हमेशा से दिल के करीब लगता है बहुत ज्यादा
0: जी,
1: वो उसमें एक हमेशा लगता है लग जा गले। तो गाने तो बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन दिल आता है वहां पे कि ये गाना है ऐसा जो सबको, सबके दिल के करीब है और सुन के बहुत सुकून भी मिलता है।
0: खैर, ये गाना हम संगीत के साथ तो सुनेंगे ही, लेकिन क्योंकि आपके दिल के बहुत करीब है और इसकी आवाज जो आपकी निकलेगी मेरे ख्याल से आपके दिल से ही निकलेगी, तो क्यों ना एक लाइन बिना संगीत के आप हमारे श्रोताओं को इस गीत की सुना दें, उसके पश्चात हम इसी गीत को संगीत के साथ में आपकी खूबसूरत आवाज में सुनेंगे।
1: जी जी, बिल्कुल।

0: एक निजी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं। आपके पति राकेश जी एक प्राइवेट कंपनी में कंट्री हेड की पोस्ट पर है, यानी कि एक ऐसी पोस्ट जिसमें सारे ही ज्यादातर काम एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं
1: जी।
0: और धीरे धीरे ये स्वभाव में भी प्रशासनिक प्रभाव दिखने लगता है
1: जी।
0: आप खुद इस बात को एडमिट कर रही हैं कि हाँ ये प्रशासनिक प्रभाव धीरे धीरे स्वभाव में दिखने लगता है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि घर पर प्रशासन किसका चलता है, आपका या राकेश जी का?
1: नहीं, हम दोनों साथ मिलके चलते हैं। हम दोनों में बहुत अच्छा तालमेल है। ईश्वर की कृपा है कि मेरे जीवन साथी के रूप में बहुत अच्छे इंसान मुझे मिले और ये नसीब से ही मिलता है। तो उनकी कॉपरेशन और हमारी सूझबूझ, अब तक बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की गाइडेंस, इन सब को मिला के हम चल रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि किसी एक का वर्चस्व हो घर पे और वो अपनी बात चलाएं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
0: बाकी ये आपने कहा कि आप मिलजुल कर परिवार के बीच में शासन और प्रशासन चलता है, बहुत अच्छी बात है। सामंजस्य का होना अति आवश्यक है एक सुखी जीवन के लिए। तो अब आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनाना पसंद करेंगी?
1: एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, रहे ना रहे हम।
0: वाह, ये जो आप कहने जा रही हैं ये मेरी जुबान आपने ले ली है। मेरे दिल में ये बात थी, मैं चाहता था कि एक लाइन आपसे इस गीत की अवश्य सुनूं, कि ये गीत मेरे भी दिल के बहुत करीब है। आइए सुनाइए कृपया ये गीत हमारे श्रोताओं को, उसके बाद इसी गीत को हम सुनेंगे संगीत के साथ में।

0: जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि जो
1: जी
0: आने वाली पीढ़ी है
1: जी
0: उनके लिए संगीत के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं।
1: संभावनाएं बहुत हैं, बल्कि अभी के समय में ज्यादा संभावनाएं हैं। पहले थोड़ा दायरा कम था संगीत के माध्यम से,
0: जी
1: वो या तो हम अगर गुरु जी से सीखते थे, गुरुकुल परंपरा से सीख रहे हैं तो परफॉर्मर होते थे, या फिर एजुकेशन की तरफ जाते थे तो कॉलेज में प्राध्यापक अध्यापक इन सब के पोस्ट के लिए हम होते थे या स्कूल में होते थे। लेकिन अभी के समय में बहुत स्कोप है कि आप अपने आप को बहुत फ्यूजन के तौर पर, वेस्टर्न सॉन्ग के तौर पर कुछ डिफरेंट करने के लिए आजकल क्रिएटिविटी बहुत देखी जाती है। और अभी के समय में बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं, उनके दिमाग में हर वक्त एक नई चीजें चलती हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत संभावना है और मेहनती भी है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी की पीढ़ी को फास्ट नंबर सॉन्ग्स और वेस्टर्न पसंद है। कुछ लोगों को पसंद होते हैं ऐसे भी सॉन्ग्स, लेकिन ज्यादातर देखा है, अभी मैं अपनी फील्ड में हूं तो मैं देखती हूँ कि बच्चों को बहुत शौक है, वो शास्त्रीय संगीत भी सीखते हैं और कर भी रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। आई थिंक आप लोग भी देखेंगे मीडिया के माध्यम से, तो टीवी पर तो अभी इतने अच्छे अच्छे टैलेंट देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके बारे में हम लोग सच में नहीं सोच सकते हैं, हमें होश भी नहीं होता होगा, तब दिमाग में भी नहीं आती थी ये सारी बातें। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा ऐसी ऐसी मुर्कियां गले से निकालते हैं, या तबला में या किसी भी चीज में, इंस्ट्रूमेंट में है, तो सब ईश्वरीय वरदान है ये लोग। और अभी तो बहुत स्कोप है, मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ है करने के लिए।
0: तो क्या आप अपने बच्चों को भी संगीत के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करेंगी?
1: हाँ डेफिनेटली, मैं, मेरी बिटिया है अभी तो कॉलेज फाइनल ईयर में है, बट उसने भरतनाट्यम भी सीखा है और वो डेडिकेटेड भी है इस चीज में। लेकिन क्योंकि एजुकेशन और ये दोनों चीजें अभी के समय में बहुत कठिन है साथ लेकर चलना, तो थोड़ा अभी है, बट वो करेगी इन फ्यूचर, उसका इंटरेस्ट है इसमें, कुछ अच्छा और माध्यम मिलता है तो आगे जरूर करेगी। और मेरा बेटा है अभी वो स्कूल में है, 9th में है, तो उसको भी संगीत का शौक है, गाता है वो भी, आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो कहना मुश्किल होता है कि क्या है। मेरा प्रयास तो रहेगा कि अपनी स्टडी के साथ ये सब चीजें भी अपनी लाइफ में होनी चाहिए। जी
0: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं नूपुर सिंह जी की आवाज में एक और मधुर गीत।

0: अच्छा नूपुर जी, एक बात बताइए,
1: जी
0: आपको संगीत ने बहुत कुछ दिया है, मेरा मतलब मान सम्मान शोहरत दौलत वगैरह, तो आप संगीत के प्रति अपनी दायित्व को किस तरह से निभा रही हैं?
1: बहुत बड़ा सवाल है आपका। देखिए, मैं ये सिर्फ इसको दायित्व के रूप में नहीं ले सकती, क्योंकि जब मैं अब इसमें चर्चा होगी तो मैं अपने बचपन की कुछ बात आपको बतानी चाहूंगी।
0: जी जरूर।
1: वो जब शुरुआत हुई होगी मेरे संगीत की, जिसका मुझे ख्याल भी नहीं है अभी, थोड़ी बहुत यादें हैं मेरे मन में, मेरे पेरेंट्स को, मेरे माता पिता को जब दिखा होगा, उन्होंने बहुत कुछ सोचकर मुझे सिखाया, एक सही रास्ता दिखाया, शास्त्रीय संगीत की तरफ, अध्यात्म से जुड़ता हुआ सब कुछ लेकर वो मुझे चले, और एक प्रॉपर गाइडेंस मिली मुझे कि कैसे चलना है लाइफ में, डिसिप्लिन होना चाहिए। सुबह का रियाज है तो 4 बजे मेरे साथ उठते थे, जब मुझे अक्ल भी नहीं होती थी तब वो मेरे साथ ठंड में भी उठते

0: या इसको इतनी इसकी कद्र नहीं की, तो मेरे लिए तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को लेकर। ता उम्र करूंगी जब तक कर सकती हूँ, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हम मरते दम तक गाते रहेंगे, ऐसा नहीं हो पाता। एक समय आता है तो गला भी साथ नहीं देता है हमारा, आवाज भी साथ नहीं देती है। तो जब तक चलेगा मेरा गला, मैं बिल्कुल करूंगी, और मेरी कोशिश भी है कि मैं उसको बांटने का भी प्रयास करूं ताकि वो बढ़े, और विद्या तो बांटने से बढ़ता है
1: जी।
0: तो मैं यही चाहती हूँ कि वो बढ़े। और तो मेरे ऊपर दायित्व तो है, चाहे कॉलेज में पढ़ाती हूँ तब भी, या आत्मचिंतन करती हूँ, अपना रियाज करती हूँ, गुरु जी के पास होती हूँ तब भी, तो ये सारी चीजें ना मेरे जहन में होती हैं, हर वक्त होती हैं। अभी भी आपसे बात कर रही हूँ तो वो चीजें हैं मेरे मन में जी।
1: तो श्रोताओं, अगला गीत हम एक और मधुर गीत सुनेंगे नूपुर सिंह जी की आवाज में, लेकिन ये कौन सा गीत होगा ये अब खुद आपको बताएंगी नूपुर सिंह जी।
0: मैं एक कोशिश करती हूँ, ये शाम की तन्हाइयां ऐसे में तेरा गम।
1: जी बहुत खूब।
0: ये शाम की

0: तो नुपुर जी, अगला सवाल मैं आपसे करता हूं कि आप स्टेज पर कार्यक्रम भी देती हैं और सुनने वालों में तो आप जानते हैं कई प्रकार के श्रोता होते हैं, अपनी अपनी पसंद भी भेजते हैं कि हमको ये सुनना है, हमको ये सुनना है। कोई ऐसा वाक्या आप हमारे श्रोताओं के साथ में शेयर करना चाहेंगी जिसमें बड़ी अटपटी सी फरमाइश आई हो?
1: अभी तक तो नहीं आई है ऐसी कुछ, और कुछ चीजें आती हैं तो क्योंकि वैसा माहौल नहीं होता है
0: जी,
1: ऑडियंस का तो होता ही है कि वो अपने हिसाब से डिमांड करते हैं, लेकिन अगर हमें माहौल भी देखना होता है, माहौल इन द सेंस कि अगर गजलें हो रही हैं तो वहां पे एक सूफी या कुछ इस तरह का वो कह देते हैं तो वो चल जाता है, कुछ हल्का चलेगा, बट एकदम से वो अगर कहते हैं कि अभी क्लासिकल चल रहा है यहाँ पर आप बॉलीवुड शुरू कर दीजिए या उसकी दो लाइन सुना दीजिए, तो वो नहीं हो पाता। देन उस वक्त तो उनको समझाना भी पड़ता है ऑडियंस को भी कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मूड अभी किसी और चीज का है तो सबका अलग अलग होता है समय और माहौल भी अलग होता है, तो ये हो जाता है कई बार, बट अभी तक तो ऐसा कुछ मेरे साथ।
0: वैसे जहां तक मैं समझता हूँ आप जैसी सम्मानित गायिका के श्रोता भी उसी प्रकार के क्लास ऑडियंस होती होगी।
1: जी, हर तरह के लोग होते हैं, क्लास भी कह सकते हैं। देखिए मेरे लिए तो श्रोता जो भी होते हैं या दर्शक हैं सभी क्लास हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है तभी वो बैठते हैं और सुनते भी हैं।
0: तो आइए श्रोता सुनते हैं नूपुर सिंह जी की आवाज में एक और मधुर गीत, और हमारी बातचीत का सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहेगा।
1: अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना

0: तो श्रोताओं, साज और आवाज इस श्रृंखला के बीच में आज के कार्यक्रम वो दिल कहां से लाऊं, इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। और हमारी आज की मेहमान हैं विश्व विख्यात गायिका नूपुर सिंह। तो नूपुर जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है। नूपुर जी, आपकी आवाज बेहद दिलकश है, संगीत के समुद्र में सुर और ताल पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ है, अभ्यास भी आपने बहुत किया है, तो आपने फिल्मों में पार्श्व गायन के लिए क्यों प्रयास नहीं किया?
1: फिल्मों में जाना इतना आसान नहीं होता, और खासकर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं जिस जगह पर जहां से बिलोंग करती हूँ, बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, और वहां पर ऐसा साधन नहीं था उस वक्त कि मैं जाऊं मुंबई तो किसके पास जाऊं, किन से बात करूं, बहुत सारी चीजें थी। तो एक अनजाना सा डर भी होता था मेरे पेरेंट्स के मन में कि वहां कैसे रहेगी और किन से बात करें, क्योंकि एक जो वहम और एक बहुत सारी चीजें जो भ्रांतियां फैलाई गई थी
0: जी,
1: होती हैं जनरली कि वहां पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हम वहां कैसे सरवाइव करेंगे, किन से मिलेंगे, कैसे लोग होंगे, तो ये सारी बातें थी शुरुआत में। तो ऐसा हुआ, उसके बाद मुझे कुछ गाने, मैंने आपको याद होगा शायद टीवी पर टेली फिल्म्स एक समय बनती थी
0: जी,
1: तो उसमें भी मुझे गाने का बहुत मौका मिला था और मैंने गाया भी
0: जी।
1: काफी साल पुरानी बात है ये, लेकिन मैंने गाया और प्लेबैक सिंगिंग के लिए मेरा जाना नहीं हो पाया, बट अभी भी है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मुझे कि आप यहाँ आओ, कुछ रिकॉर्डिंग्स हमेशा करती हूँ जाके वहाँ, लेकिन प्लेबैक के लिए बहुत ज्यादा नहीं कर पाती वो, क्योंकि वैसा कुछ बन नहीं पा रहा मेरे लिए भी। अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ, ईश्वर की कृपा हुई, तो जरूर करूंगी।
0: नूपुर जी, गीतों का सिलसिला तो हमारा चल रहा है, मैं बीच में एक वही अटपटी सी बात आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग जो गीत सुन रहे हैं, हमारे श्रोता वो पैटर्न काफी पहले सुन भी चुके हैं। एक गजल आपने मुझे कल या एक दो दिन पहले सुनाई थी, दो लाइनें, क्या मैं आपसे ये गुस्ताखी कर सकता हूँ कि उस गजल की दो लाइनें आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं, ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंच सके जो लोग आप जैसी आवाज की तलाश कर रहे हैं?
1: जी जी जरूर। तेरा गम है तो इत्मीनान सा है,

0: ऐसे लगता है किसी वादियों की गहराई से आवाज आ रही है और इसको सुनते ही रहा जाए। लेकिन
1: शुक्रिया
0: क्योंकि समय की अपनी सीमा होती है,
1: जी
0: अभी फिलहाल हमारे डायरेक्टर मिस्टर भरत सपोरी आपसे बात करेंगे और उसके बाद मेरा और आपका बातचीत का सिलसिला और चलता रहेगा।
2: नुपुर सिंह जी, आपकी आवाज बहुत ही दिलकश है और ये सीधे दिल में उतर जाती है। आपका एक बार फिर मैं रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। और हमारी कोशिश है कि आप जैसे कलाकारों की आवाज हम विश्व के सभी सुनने वालों तक लेके जाएं। और मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे, वो ये कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप उनको रेडियो वितस्ता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: मैं हमेशा यही कहूंगी कि जो भी अच्छाई के साथ चलना है उस पे चलें। बहुत तरह के लोग मिलते हैं हमें रास्ते में, जो हमें अलग-अलग तरह की बातें बताते हैं। हमेशा अपने दिल की सुने और बड़ों की बात जरूर सुने। कई बार होता है कि हम सिर्फ अभी अपने बारे में सोचते हैं कि मैं सब कर रहा हूं, मैं कोचिंग करता हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं डांस करता हूं, मुझे सब आ गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमें माता पिता तो हमारे साथ हमेशा होने चाहिए। मैं इस पे हमेशा जोर देती हूँ जब भी मेरी बात होती है किसी से भी, और समझाती भी हूँ, क्योंकि उनसे बड़ा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद हमारे होते हैं ईश्वर। उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर ही है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो भटकने के रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी करें दिल से करें। मेरा हमेशा यही रहता है संदेश उन लोगों को कि दिल से करना चाहिए और अच्छा काम करें, नेक काम करें, जिसमें उनको भी सुकून मिले, अपने देश का नाम भी रोशन हो, माता पिता का नाम भी रोशन हो। तो यही मेरा तो हमेशा यही रहता है, जो भी नई पीढ़ी है उनको ये सब कहने का।
2: जी, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद नुपुर सिंह जी। और आपने जो बात कही कि जो ईश्वर है वो हमारे माता पिता में बसते हैं, और ये सच्चाई है। और हम माता पिता के आशीर्वाद के बिना जिंदगी के किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपका
1: जी
2: बहुत बहुत
1: बिल्कुल,
2: धन्यवाद, थैंक यू।
1: थैंक यू।
0: तो आइए दोस्तों, सुनते हैं नुपुर सिंह जी की सुरीली आवाज में एक और करण प्रिय गीत।
1: भैया ना धरो

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना। Your

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। शब्द नेक कमाईआं ते इस शब्द नूं आवाज़ दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिआ सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द दी वीडियो जे एस कलवाना जी ने कीती है। इस वीडियो च काम करन वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदरा जसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस कीता है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसीं इस शब्द दी वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया था हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सर।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: दिलों में प्यार का जज्बा जगाए रखते हैं, हम अपनी लय से फिजा को सजाए रखते हैं। यूं तो संगीत के सुर हर तरफ बिखरे हैं, पर हम आपकी फरमाइश से रिश्तों को सजाए रखते हैं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी, और आपके अपने मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता आप सुन रहे हैं। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। दोस्तों, समय हो चला है आपके और हमारे पसंदीदा शो आपकी फरमाइश का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां आपकी फरमाइश का मतलब सिर्फ एक गाना बजा देना भर नहीं है, ये मंच है आपकी भावनाओं का, आपकी यादों का और आपके अपने जज्बातों का। हम आपके भेजे हुए संदेशों और आपकी फरमाइशों के जरिए आपकी भावनाओं को हजारों लाखों श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, यानी हम गीतों के धागे से दिलों को दिलों से जोड़ने का काम करते हैं। और आज का ये शो बेहद खास है, खास इसलिए क्योंकि आज इस सुरीले सफर में मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही बेहतरीन और सुरीली आवाज। ये आवाज आज पहली बार रेडियो वितस्ता के मंच से आप सभी तक दस्तक देगी, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दस्तक बहुत पसंद आएगी।
1: शुक्रिया भरत जी, और FM 90.0 रेडियो वितस्ता सुनने वाले सभी प्यारे श्रोताओं को अनु का भी बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ इस खूबसूरत शो का हिस्सा बनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है।
0: हमें और हमारे पूरे रेडियो वितस्ता परिवार को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि अनु का अंदाज बयां और उनकी आवाज की सादगी सीधे आपके दिलों तक जरूर पहुंचेगी और आज की दोपहर को और भी यादगार बनाएगी।
1: तो फिर देर किस बात की, थाम लीजिए रेडियो वितस्ता का हाथ, करते हैं शुरुआत आज के फरमाइशी गीतों का सफर। प्रोग्राम आपकी फरमाइश में लेते हैं पहली फरमाइश, जो आई है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बड़े दिल वाला का गीत। गीत के बोल है अभी ना जा आज कहीं। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

0: आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुमार हेडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले श्रोता है सईद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म 20 साल बाद का गीत। गीत के बोल है जरा नजरों से कह दो। इस गीत को आवाज दी है हेमंत कुमार ने। आइए पेश करते हैं इन सभी का ये मनपसंद गीत।
1: नजरों से कह दो जी।

लेती हूँ अगली फरमाइश जो आई है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आशा से गीत। गीत के बोल हैं धक धक से धड़कना सिखा दे। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।

या श्रोताओं, आपकी नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है कस्बा ब्राडा जिला अंबाला हरियाणा से, भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म चौकीदार का गीत। गीत के बोल है, ये दुनिया नहीं है जागीर किसी की। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। रवि कुमार राहुल के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये मनपसंद गीत।

0: लेती हूँ अगली फरमाइश, जो आई है गांव जुगुड़ी, जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता है रणधीर भांगड़। ये सुनना चाहते हैं फिल्म बॉबी से गीत, और गीत के बोल हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो। इस गीत को मधुर आवाज दी है शैलेंद्र सिंह और लता जी ने। रणधीर भांगड़ के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। आइए सुनते हैं इन सभी का ये फरमाइशी गीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

सभी श्रोताओं के लिए एक और फरमाइश हम पेश करते हैं जो हमारे पास आई है प्रिंट तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, पवनीत कौर और सारा संधू परिवार। तो साथ में बंशीलाल संधू हमें लिखते हैं राम राम जी। हम सभी की ओर से आप सभी को और सभी श्रोताओं को राम राम। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक फूल दो माली से गीत। गीत के बोल है ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए प्रस्तुत है बंशीलाल संधू और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

यह कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप इस कार्यक्रम को पहली बार सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत या कोई भी लोक गीत सुनना चाहते हैं, आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आपको लिखना होगा अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम जो आपका फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं, और साथ में आपको लिखना होगा कि आप कहां से लिख रहे हैं। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेता हूं एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता हैं पीएस नहावकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मदारी का गीत। गीत के बोल है दिल लूटने वाले जादूगर। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने। पीएस नहावकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष मुरहेकर। और ये हमें प्यार भरा नमस्कार भी भेज रहे हैं। आप सभी को हमारी ओर से भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं इन सभी का ये मनपसंद गीत।

तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अगली फरमाइश का, जो आई है सेक्टर 18, जगाधरी, जिला यमुनानगर। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन, मीनाक्षी, पुलोमा व डॉक्टर ईशानी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आपकी कसम से गीत, और गीत के बोल हैं जिंदगी के सफर में। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का पसंदीदा गीत।

0: जी हाँ श्रोताओ, ये था आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए आज्ञा। आशा करती हूँ मेरी आज की ये पहली प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है,

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: नब्बे अशारिया 0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
4: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए मोहम्मद अजीज के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your reaction.

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर अन्नू, लेके आई हूं कार्यक्रम अंबाला डायरीज, जो आधारित होता है अंबाला में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों और साहित्यिक समागम पर। आज आदरणीय श्री ओपी बनमाली जी ने अंशुल मेमोरियल ट्रस्ट एवं रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया के तत्वाधान से बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में विख्यात कवि मुंशी प्रेम चंद की कहानियों पर आधारित कथा वाचन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे रेडियो वितस्ता के संस्थापक भरत सुपोरी, विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती शालिनी जी, डॉक्टर आर एस ढिल्लो जी, डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, रोटेरियन श्रीमती चांद चावला जी और अन्य रोटेरियंस एवं शिक्षक उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक रेडियो रिपोर्ट।
1: लेट सन ऑफ ट्रस्ट प्रेसिडेंट ओम प्रकाश बनमाली जी, द ट्रस्ट एम्स टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ टू लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय टेकिंग अप सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट्स मेनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड हेल्थ एंड मिसलेनियस सर्विसेज in and around Ambala, funded mainly by Banmali family from their own known resources. Trust is managed by Banmali family and like-minded small group of sincere friends with selfless mindset. Thank you, Banmali Trust.
2: Rotary Club Ambala industrial area antarashtriya stan par mashhoor us samajik seva sangathan ki ek shakha hai जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए 200 से ज्यादा देशों में काम करता है। यह संगठन गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और महामारी से लड़ने में मदद करता है। यह क्लब अंबाला और उसके आसपास के ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी इलाकों में सामाजिक सेवा को प्रोजेक्ट चलाकर मान पाता है कि सेवा कर रहा है। साहित्य के आकाश के ध्रुव तारा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानियां केवल शब्द नहीं बल्कि भारतीय समाज का ऐसा जीवंत दर्पण है जिसमें आम आदमी की धड़कनें साफ सुनाई देती है। आइए आज के इस विशेष समीक्षा स्तर पे मैं उनकी एक ऐसी ही अमर कहानी के पत्तों को पलटते हैं और उनके मन को गहराई से समझते हैं।
0: सभी आमंत्रित मेहमानों का स्वागत अभिनंदन किया श्री ओपी बनमाली जी ने मंच से।
3: आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे मित्र श्री भारत सुपोरी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र गुप्त, रोटरी क्लब अंबाला इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान रोटेरियन दीक्षित कपूर जी, रोटेरियन अनिल सहगल जी, रोटेरियन रोली चोपड़ा जी, कोषाध्यक्ष रोटेरियन अनिता कपूर जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रोटेरियन नीता भापर जी, रोटेरियन जान चावला जी, यहाँ के प्रधानाचार्य शालिनी जी, शिक्षिकाएं, शिक्षक और भारत का भविष्य मेरे सामने बैठे प्यारे बच्चे। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों को साहित्य से जोड़ना। लोग साहित्य से हटते जा रहे हैं, नई पीढ़ी विशेष रूप से, और साहित्य से जोड़ने के लिए हमारे मन में आया कि भारत के उपन्यास सम्राट, साहित्यकार, अमर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी को फोकस करते हुए हम कुछ ऐसा करें जो उनको मालूम रहे, जागरूक रहे, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में मालूम हो। तो हमने कहानी पाठ का कार्यक्रम रखा है। ऐसे कार्यक्रम आमतौर पर नहीं किए जाते, तो थोड़ा सा लीक से हटके हमने कार्यक्रम रखा है। इससे पहले के बच्चे कहानियां पढ़े, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत ही संक्षेप में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का जो साहित्य है और दुनिया का जो साहित्य है, उसमें हिंदुस्तान का नाम दर्ज करने वाले अगर कोई साहित्यकार हुए हैं तो उसमें अमर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बहुत गर्व के साथ लिया जाता है।
0: सरस्वती वंदना बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नन्हे बच्चों ने प्रस्तुत किया।

0: करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना
1: है। हमारे बीच रेडियो वितस्ता के संस्थापक मुख्य अतिथि श्री भारत सोपोली जी हैं, उनकी सहायिका के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। अन्नु जो मास कम्युनिकेशन से डिग्री याफ्ता हैं और विशेष रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों को कवरेज करने के लिए रखी गई हैं, आज पहली बार इसकी कवरेज के लिए यहाँ आई, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आप इस लाइन में बहुत आगे जाएं, हमारा शुभ आशीर्वाद।
2: कथा वाचन में बच्चों ने जो कहानियां प्रस्तुत की वो है नमक का दरोगा, ईदगाह और दो बैल। प्रस्तुत है बच्चों द्वारा कथा वाचन, एक रिपोर्ट।
3: आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण और शिक्षकगण और मेरे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका जन्म 31 जुलाई को हुआ था। नमक का दरोगा कहानी एक अत्यंत लोकप्रिय और कालजय कहानी है। यह ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता की धन बल पर विजय का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहानी के मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर, एक गरीब पढ़े लिखे और ईमानदार व्यक्ति जो दरोगा के पद पर नियुक्त होते हैं। पंडित आलोपीदीन, एक धनवान व्यक्ति जो अवैध व्यापार में लिप्त है। वंशीधर के पिता, एक व्यवहारिक और वृद्ध व्यक्ति जो ऊपरी आय को स्वीकार कर लेने की सलाह देते हैं। कहानी का संक्षिप्त सार, अंग्रेजी शासन के दौरान जब नमक का नया विभाग बना और उस पर रोक लगी तो नमक की चोरी बढ़ गई। काफी कोशिशों के बाद मुंशी वंशीधर को दारोगा का पद मिल ही गया। पद मिलने पर उनके पिता ने उन्हें समझाया कि वह वेतन से ज्यादा ऊपरी आय पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि वेतन तो पूर्णिमा का चांद है जो घटते घटते लिप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ नाला है। एक दिन जब मुंशी वंशीधर सो रहे थे तो उन्हें यमुना नदी के पुल से गाड़ियों के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो मुंशी वंशीधर की गाड़ियां अवैध रूप से नमक लेकर जा रही थी। उन्होंने गाड़ियां रोक दी। पंडित आलोपीदीन को अपनी धन शक्ति पर पूरा विश्वास था। उन्होंने पहले 1,000, फिर 5,000 और फिर 40,000 रुपए की रिश्वत देने तक की कोशिश की, लेकिन वंशीधर ने रिश्वत लेने से मना कर दिया क्योंकि वह एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन जब यह मामला कोर्ट में, अदालत में पहुंचा तो पंडित आलोपीदीन की धन शक्ति की वजह से उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और वंशीधर को बहुत बेइज्जत कर उनके पद से हटा दिया गया। जब वह अपने घर पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और उनकी माता और पत्नी ने उनकी इस ईमानदारी और सच्चाई को मूर्खता कहा। वंशीधर उस समय अकेले पड़ गए, लेकिन वह अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हटे। कुछ दिन बाद पंडित आलोपीदीन सजे हुए रथ में बैठकर उनके घर पहुंचे। वंशीधर और उनके पिता चिंतित हो गए कि कहीं वे दोबारा उनके बेइज्जती करने तो नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे उन्हें अपनी पूरे बंगले की जायदाद का परमानेंट मैनेजर बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने बंगले की पूरी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बनाना चाहता हूँ। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। पंडित आलोपीदीन ने कहा कि मुझे वंशीधर की नहीं, उस नमक के दारोगा की जरूरत है जो उस समय अपनी सच्चाई और ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने परमानेंट मैनेजर का पद स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद।
4: आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण व मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा एक अद्भुत, प्रसिद्ध व लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी व अपना काम कर्तव्य प्रायण से करना चाहिए। इस कहानी में केवल ईमानदारी व धन के बीच में टकराव नहीं है, अपितु यह आज के युग में फैल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करती है। इस कहानी में प्रमुख दो पात्र हैं, मुंशी वंशीधर। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है जो अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करता है, परंतु वह दुनिया के थपेड़ों से अनजान है और अपने असूलों के प्रति अड़िग है। पंडित आलोपोदीन। पंडित आलोपोदीन एक धनवान व्यक्ति है, वह बहुत घमंडी है। वह धन के बल पर कानून व समाज को बेचता और खरीदता है पंडित आलोपोदीन। परंतु अंत में वह मुंशी वंशीधर के सामने नतमस्तक हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली अत्यंत सरल व सहज है। इनकी कहानी मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम धन के बल पर कुछ भी नहीं खरीद सकते। हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। आज के युग में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। धन्यवाद।
5: नमक के दारोगा के बारे में बताने के लिए और नमक की त्योहारों का देश
6: और बच्चों के मन में त्योहारों की उम्मीद और त्योहारों की वेट। बच्चे बड़े खुशी से इंतजार करते हैं। इसी कहानी को बताते हुए हमारे अगले दो छात्र हैं जो ईदगाह कहानी को पेश करने जा रहे हैं। हमारे छात्र हैं अभिनव चौहान क्लास 6 से जो समीक्षा पेश करेंगे और साथ में है संजना फ्रॉम 7th क्लास जो ये कहानी पेश करेंगी। संजना एंड अभिनव।
7: ईदगाह मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई कहानी। यह कहानी बाल मनोविज्ञान की है। इसी से गरीब घर के बच्चों का जीवन बनता है। हमीद 4-5 साल का अनाथ और दुबला पतला बच्चा है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और वह मानता है कि मेरे अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, मेरी अम्मी जान अल्लाह मियां से मेरे लिए नई चीजें लेने गई हैं। और अमीना हमीद की बूढ़ी दादी है। वह सिलाई कढ़ाई कर जैसे तैसे हमीद और अपना पेट भरती है। रमजान के पूरे 30 दिन रोजों के बाद ईद आई। ईद पर सारा मोहल्ला खुश था और ईद पर सारे अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहे थे तो हमीद भी मेले में गया। हमीद ने मिठाइयां और खिलौने छोड़कर अपनी दादी के बारे में सोचा कि जब मेरी दादी खाना बनाती है तो उनके तवे पर उंगलियां जल जाती है। वह लोहे की दुकान पर गया। लोहे की दुकान पे से चिमटा खरीदा। चिमटा खरीद कर जब वह घर आया तो दादी बहुत गुस्सा करती है। दादी कहती है कि तुम ये क्या लाए हो। जब हमीद ने पूरी बात बताई कि जब दादी आप के तवे पर हाथ चलते तब मेरे से देखा नहीं जाता तो मैं आपके लिए चिमटा लाया। दादी बहुत खुश होती है और गले से लगा लेती है। धन्यवाद।
8: नमस्कार, आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी ईदगाह की समीक्षा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी एक बहुत ही सुंदर और अच्छी कहानी है। इस कहानी को पढ़कर पता चलता है कि उम्र या हालात देखकर इंसान की समझदारी तय नहीं होती। कभी कभी छोटे बच्चे भी मुश्किल हालातों में पहले से समझदार और बड़े सोच वाले बन जाते हैं। कहानी का मुख्य पात्र हामिद है जो केवल 8 साल का छोटा बच्चा है। उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उसकी दादी जैसे तैसे थोड़े पैसे जोड़कर दोनों का पेट भरती है। कहानी में ईद का त्योहार आता है और सभी लोग मेले में जाने की तैयारी करते हैं। हामिद भी मेले में जाने के लिए बहुत खुश होता है। हामिद की दादी जैसे तैसे थोड़े पैसे जोड़कर उसे 3 आने देती है ताकि वह भी मेले में जा सके। हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है। बाकी बच्चे अपने पैसों से खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपने मन पर काबू रखता है और ये सब चीजें नहीं खरीदता। हामिद मेले में से एक बहुत ही जरूरी चीज खरीदता है, रसोई के लिए चिमटा। हामिद ने हमेशा देखा है कि जब भी उसकी दादी तवे पे रोटी सेकती है तब उसकी दादी की उंगलियां जल जाती है, इसे क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं था। हामिद को अपनी दादी का दर्द हमेशा याद रहता, इसलिए उसने अपनी इच्छाएं रोककर अपनी दादी के लिए एक काम की चीज खरीदी। इस कहानी को पढ़कर पता चलता है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में ही हामिद कितना समझदार बच्चा था। धन्यवाद।
5: हमें बताने के लिए कि बाल मनो वैज्ञानिक क्या क्या चीजें जांचते हैं, हमारे बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वो हमें कितना ऑब्जर्व करते हैं, ये कहानी हमें इस चीज को जल्द देती है। यानी हमें बच्चों के सामने अपने आप को उस रूप में पेश करना है जिस रूप में हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग अ मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। नाउ बैल। भारत के किसान बैलों के बिना काम करने बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बैल क्या मानवता के रूपों को भी दर्शाते हैं? ऐसा कुछ बताने के लिए अगली कहानी दो बैलों की कहानी मुंशी प्रेमचंद की द्वारा लिखी हुई और इसे पेश करने आ रहे हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स एंजल और समीक्षा बाय आर्य।
9: आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रेमचंद के मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी दो बैलों की कथा के मुख्य पात्र दो बैल है जिनका नाम हीरा और मोती है। वह दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत गहरी मित्रता है। वह दोनों अपने मालिक झूरी से भी बहुत प्रेम करते हैं और झूरी भी अपने बैलों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। उसकी पत्नी उसके बैलों को अपने मायके भेज देती है और उनकी इच्छा ना होने के बावजूद भी उन्हें गया के घर जाना पड़ता है। वहां पे उनको अच्छा व्यवहार नहीं मिलता और उनसे बहुत ज्यादा मेहनत कराई जाती है और वो अपने पुराने घर और झूरी को बहुत याद करते हैं। गया के घर वो कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वहां एक छोटी लड़की उनकी मुश्किलों को समझते हुए उन्हें एक चुपके से रोटियां खिलाती है। इससे उस लड़की के बारे में यह पता चलता है कि उसके मन में पशुओं के प्रति दया और प्रेम है। दोनों बैल गया के घर से भागने में एक बार सफल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। वहां पर और पशु भी भूख और परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। मीरा और मोती खुद परेशानियों में होने के बावजूद दूसरे पशुओं को मदद करने की कोशिश करते हैं। वह दोनों अपनी ताकत से बाड़े की दीवार गिराने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे पशु वहां से बाहर निकल सके। वह मोती इस चीज में बहुत साहस दिखाता है और हीरा उसका साथ देता है। इस पूरे घटनाक्रम से हमें यह पता चलता है कि उन दोनों के बीच दोस्ती और निष्ठा का बहुत बड़ा महत्व था और वह बाद में वहां से जाने के बाद कठिन परिस्थितियों से निकलने के बाद अपने मालिक झूले के पास पहुंच जाते हैं और झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। धन्यवाद।
10: नमस्कार, मैं आप सभी को इस कहानी की निम्नलिखित समीक्षा बताने जा रही हूँ। यह कहानी केवल दो पशुओं के आपसी प्रेम की कहानी नहीं है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रक्षिप्त रूपक है। इस कहानी में हीरा और मोती भारत की उस सीधे साधे और सहनशील जनता के प्रतीक हैं, जहां ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता किसी पर। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो जनमानस को प्रतिरोध पर उतरना पड़ता है। इस कहानी में हीरा अत्यंत शांत और अहिंसक प्रवृत्ति का प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ मोती इसके विपरीत अत्यंत उग्र और अहिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। प्रेमचंद इस कहानी में यह दर्शाते हैं कि इन दोनों की स्वतंत्रता की लड़ाई में इन दोनों का अपना अपना योगदान था। कहानी का मूल रूप यह है कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष, यातनाएं और कड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। प्रेमचंद जी ने इस कहानी पशु मनोविज्ञान का यथायथ चित्रण करते हुए कहा है कि जब प्रेमचंद ने यह चित्रण करते हुए कहा है कि जब हीरा कांजी हाउस में बंधा हुआ था तब मोती के पास भागने का अवसर था, लेकिन वह अपने मित्र को छोड़कर नहीं जाता, वह उसके साथ रहता है। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है, यह अनुभव होता है इनकी सच्ची मित्रता का। भारतीय ग्रामीण जीवन में किसान और उसके मवेशियों का रिश्ता केवल उपयोगितावादी नहीं बल्कि आत्मीय और भावनात्मक होता है। जैसे झूरी अपने बैलों को मवेशी नहीं बल्कि अपने परिवार जैसा मानता है। कांजी हाउस का दृश्य कुछ ऐसा है जैसे कि जेलों में व्यवस्थाएं होती है जहां असहाय जीवों या नागरिकों को ठूस ठूस कर रखा जाता है और वहां उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की भी अनदेखी की जाती है। अंत में मुंशी प्रेमचंद हम सबको यह दर्शाते हैं, यह सीख देते हैं इस कहानी से कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, हमें हमेशा हिंसा के प्रति अपनी आवाज उठानी चाहिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद।
2: गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता द्वारा बच्चों को संबोधन।
11: आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत पुरी जी, आदरणीय डॉक्टर रतन सिंह जी ढिलों, भाई ओम बनवाली जी, प्राचार्य श्रीमती शालिनी शर्मा जी, रोटेरियन दीक्षित कपूर जी प्रधान, रोटेरियन अनिल सहगल जी, रोटेरियन अनीता कपूर जी, रोटेरियन डोली चोपड़ा जी, रोटेरियन चांद चावला जी, रोटेरियन रीति थापर जी, श्री जगपाल राणा जी, अध्यापिकाएं तथा छात्र छात्राएं, नव प्रतिष्ठित साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर अंशुल बनमाली मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट तथा रोटरी क्लब इंडस्ट्रियल एरिया अम्बाला के संयुक्त तत्वावधान में कहानी वाचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं भाई ओपी बनमाली जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अंशुल बनमाली चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से पहले भी कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से बच्चों में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, उनका उत्साहवर्धन होगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। जिन बच्चों ने आज कहानी वाचन किया तथा जिन्होंने उन पर टिप्पणियां दी अथवा समीक्षा दी, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिन्होंने भी कहानियां पढ़ी उनकी प्रस्तुति वास्तव में ही काबिले तारीफ है, बहुत ही सराहनीय है। किसी भी रचना की समीक्षा करना एक बहुत दुस्तर कार्य है, पर आज जिन छात्रों ने कहानियों की समीक्षा की बहुत ही सुंदर एवं सटीक थी, उन्होंने इसमें नील शीर विवेक का परिचय दिया, इनका प्रयास भी अत्यंत सराहनीय रहा, मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ। इस अवसर पर प्रेमचंद साहित्य से संबंधित मैं कुछ अपने विचार रख रहा हूँ। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी छाप भारतीय साहित्य पर युगों युगों तक रहने वाली है, उनकी संपूर्ण साहित्य का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह तथ्य, यह सच्चाई निकल कर आती है कि उनके हृदय में विद्यमान राष्ट्र प्रेम का अंकन उनके साहित्य में व्यापक धरातल पर हुआ है। उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा थी, जिसका उल्लेख उनके कृतियों में अनेक स्थानों पर मिलता है। उनका अटल विश्वास था कि किसी समाज और राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब वे अपनी संस्कृति, सदाचार एवं आदर्श को अपनाने की सदैव चेष्टा करते रहेंगे। प्रेमचंद जी ने अपनी कृतियों में परिवार की छोटे से छोटी समस्या से लेकर समाज और देश की बड़ी से बड़ी समस्या को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन के अनेक चित्र उकेरे गए हैं। उनके पात्रों को चित्रित करने की कला अनूठी है। उन्होंने अपनी रचनाओं में जितने भी पात्रों का चयन किया है वे सभी समाज के चलते फिरते प्राणी हैं। मानव मन के भीतर की प्रवृत्तियों का चित्रांकन प्रेमचंद जी की अपनी खासियत है। पात्रों का अंतर्द्वंद, मन स्थितियों का विश्लेषण और संघर्ष उन्हें जीवंतता प्रदान करता है। पात्रों के कथोपकथन अथवा संवाद किसी भी रचना को दमदार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरस और स्वाभाविकता अच्छे संवाद के गुण होते हैं। उर्दू के साधारण शब्दों के मेल से बनी जिस भाषा का प्रयोग प्रेमचंद जी ने किया उसमें गति है, प्रवाह है और स्वाभाविकता है। उनके पूरे सृजन में रोचकता का गुण सदैव व्याप्त रहता है। प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रचनाकार थे। उन्होंने अपने संपूर्ण साहित्य में सेवा, ममता, सहानुभूति, आत्मत्याग, देश प्रेम और उच्च भावनाओं का प्रतिपादन किया है। मुंशी प्रेमचंद जी के संपूर्ण साहित्य में हमारी राष्ट्रीय जागृति का पूरा इतिहास अंकित है। मैं मुंशी प्रेमचंद जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं भाई ओपी बनवाली, प्रधान अंशुल बनवाली मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया।
2: डॉक्टर आर एस ढिल्लो ने बच्चों को संबोधित किया।
12: आपका बेबी स्कूल तो बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल है। यही पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल था, यही मुझे याद है। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी या इंटरनेट चल रहा था, तो अब फिर दोबारा वही बेबी स्कूल स्थापित हो। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और आपको पता है क्या, अभी आपने इसको क्या कहेंगे, कथा वाचन किया। बहुत अच्छा लगा, एक बच्चा कथा वाचक है और दूसरा बच्चा समीक्षक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ एक रिमन फाउंडेशन है, उसकी तरफ से हर साल कुछ स्कूलों के टीचर्स की राइटिंग कॉम्पिटिशन होती है। पिछली बार जो राइटिंग कॉम्पिटिशन हुआ मेरे पास वो सारी और उसमें से 60% नकल की हुई थी आपके डिजिटल दो बात करते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने वो चेक किए और बाद में हमने फैसला किया कि वो कैंसिल कर, यानी आज तक कोई बहुत हो कहानियों की, पाठ की, कथा की कोई चोरी हो, क्योंकि ईद आ गया ना, ईमर्स, ईमेल और कहां का ही लगती है, कहां का ही लगती है, सब होगा आपको लगती है ना। वो ऐसे ई बुक्स आ गई है, अब आपको किताब लाइब्रेरी में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर जाओ, वहां आपको लाइब्रेरी मिलेगी, आप ई बुक्स जो है वहां से आप कर सकते हैं। और आजकल जो पीएचडी कर रहे हैं वो यही काम करते हैं, वो वहीं से ही कॉपी कट पेस्ट करते हैं और किसी ले लेते हैं। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद किस लिपि में लिखते थे, किस लिपि में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद, क्या उनकी भाषा हिंदी है? लिपि में लिखते थे, किसमें लिखते थे, देवनागरी में नहीं लिखते थे। दूसरी बात, उनकी भाषा हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी इसलिए कि हर आदमी उसको समझ सके, कठिन भाषा नहीं, वो संस्कृत निष्ठ भाषा नहीं, आम आदमी जैसे आप बातचीत करते हो। कहाँ पैदा हुए थे?
2: मुख्य अतिथि भरत सुपोरी ने बच्चों को सराहा और मार्गदर्शन किया।
12: आदरणीय अभिमन मालिस जी, अंशुल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षागण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महान उपन्यासकार और कालजयी जो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिनका बहुत गहरा असर हम सब भारतवासियों पर और विश्व के सभी जो इनके पढ़ने वाले हैं उन पर है। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं प्रधानाचार्य जी को कि बच्चों को ऐसे संस्कार इस स्कूल में, जो हमारे अंबाला का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना शिक्षण संस्थान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है इन बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ पर 23 बार आके इन बातों को समझा, इन कहानियों को समझा और इन कहानियों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बच्चों ने नमक का दरोगा कहानी प्रस्तुत की और उसकी समीक्षा भी प्रस्तुत की। ईदगाह, जिसमें हामिद एक ऐसा किरदार है जिसके पास शायद कुछ भी नहीं है, पर अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता उसके ना होते हो या अपने दादी के लिए जो उनका प्यार, उनकी जिम्मेदारी छोटे होने के नाते थी, ये हम सबको एक सीख देता है कि हमें अपने माता पिता को, हमें अपने जो वृद्धजन है घर में, उन्हें सम्मान करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और आज के दौर में इस चीज का बहुत ज्यादा अभाव है। मैं कर्नाली जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आज मुझे इस जगह पर, यहां पर कुछ बात करने का मौका दिया। मैं आप सभी से बहुत छोटा हूँ। हमारे पास डॉक्टर जनो सर है, हमारे पास जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है, या चांद चावला जी है, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है, जिस वजह से मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाया हूं। उसके बाद दो बैल की कहानी आप बच्चों ने सुनाई और उसकी समीक्षा की। इसमें आप लोगों ने मुझे अपने बचपन की यादों में

प्रस्तुत की, क्योंकि मैं आवाजों को ज्यादा अच्छे से पहचानता हूँ और हमारे पास एंजल और आर्यन आए थे, ताकि दो बच्चों के नाम तो मैंने नोट नहीं किए। जैसे आर्यन की आवाज है या एंजल की आवाज है, ऐसे सब बच्चों की आवाज है। ये वो आवाज है जो हमारे देश के लोगों को जागृत कर सकता है। आप सभी के लिए मैं सभी को कहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें जो इन संस्कारों को अपने अंदर डाल रहे हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने स्कूल के, अपने टीचर्स के बारे में, अपने जो बड़े हैं उनके बारे में सोचते हैं। सोचिए तो मैं बहुत कुछ आया हूं, पर आप लोगों ने कहानियों में वो सारी चीज बता दी। मैं सभी बच्चों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि समय बदल गया है, दौर डिजिटल हुआ है, और डिजिटल दौर में हमारा सबसे क्लोज साथी जो है वो मोबाइल है। मोबाइल के फायदे भी है पर बहुत ज्यादा नुकसान भी है, खास करके बच्चों के बाल मन पर, जो बहुत आसानी से कोई चीज पा लेते हैं। जब हम बचपन में थे तो हम मश्क लेते थे। मैंने स्कूल में उर्दू पढ़ी है और हिंदी मैंने यहां आके सीखे, और कोशिश करता हूं कि आज हिंदी में ही आपसे बात करूं। कोशिश करता हूं कि उसका उच्चारण सही हो, पर वो तभी संभव हो सकता है जब आप बार बार उस चीज का एक्सरसाइज करें, उस चीज को पढ़ें। मोबाइल हमें एकदम शीर्ष तक पहुंचाता है, पर वो रास्ता नहीं है। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, हमें तरक्की करनी है, हमें अपने आंखों को भी बचाना है, तो हमें स्क्रीन टाइम बहुत कम करना पड़ेगा। आप कहानी पढ़िए, आप मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़िए, उन कहानियों को पढ़ने से आपको केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का अनुभव मिलेगा, जैसे आप बच्चों ने यहां पर प्रस्तुत किया। बीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि किताबों को अपना सच्चा मित्र बनाएं। जब आप सोने जा रहे हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट कोई भी किताब का कोई भी पन्ना जरूर पढ़िए। आप देखिए कि आपको कितनी आत्मिक शांति मिलेगी और बहुत अच्छी नींद भी आ जाएगी, और आप अपनी जिंदगी को आगे की ओर सही दिशा में लेके जाएंगे। संवेदनशील बनिए, जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को यहां प्रस्तुत किया। हामिद एक ऐसा किरदार जो बहुत ही संवेदनशील अपने परिवार के प्रति है, जिसने अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीदा, अपने लिए कोई खिलौना नहीं खरीदा, सिर्फ ये सोच के कि दादी जब रोटी बनाती है उसकी उंगलियां जल जाती है जब वो रोटी को पलटती है तवे पर। ऐसे संवेदनशील आप बनिए, और मुंशी प्रेमचंद जी हमें ऐसे बहुत सारी चीजें सिखाते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी को सक्षम बनाएं और अच्छा बनाएं। अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व कीजिए। देखिए, जो भी आपकी मदर टंग है, जो मां बोली है, जो हम जन्म के बाद हम पहला शब्द जो मां से सुनते हैं वो हमारी मां बोली है। आप अपनी संस्कृति को सबसे ऊपर रखिए, मां बोली को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि वही आपकी पहचान है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे फेस्टिवल्स है, आने वाले दिनों में हमारी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने हैं। हमारे जो आने वाले दिनों में बहन और भाई का जो रिश्ते का फेस्टिवल है, उसको आप बहुत अच्छे से मनाइए। बहन के प्रति अपना स्नेह प्यार रखिए, और बहन सिर्फ वही नहीं जो घर में है, जो हमारा समाज है उसके प्रति भी आप स्नेह रखिए। संस्कार के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को साधुवाद देना चाहता हूं, प्रधानाचार्य जी को और सारे शिक्षकों को जो सही दिशा इस स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यही बच्चे हमारे देश के स्तंभ बनेंगे, क्योंकि हमारा देश सबसे युवा देश है विश्व में, और आप पर निर्भर है हमारे देश की रूपरेखा। आगे जो भी हमें तरक्की करनी है, अगर आपके पास ये संस्कार है तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं, और बच्चों को साथ साथ इन संस्कारों को ग्रहण करने के लिए, और आपको बार बार ये बताने के लिए कि हम उस
धरा से

0: ताल्लुक रखते हैं हम उस धारा के साथ जुड़े हैं जो भारत माँ कहलाती है। तो भारत माँ के लिए हम सबको अपना योगदान देना जरूरी है। मैं डॉक्टर जिलो सर और हमारे जितने भी मेरे से बड़े हैं उन सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, और साथ में हमारी रेडियो हिंदुस्तान जो FM 90 अमाला छापनी का एक सामुदायिक रेडियो है, मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को आप हमारे स्टूडियो भेजिए, इन कहानियों को हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ, और हम अम्बाला के सभी बच्चों तक रेडियो के माध्यम से इन कहानियों को पहुंचाएंगे। और बहुत अच्छी आवाज लिखी है, और मैं चाहता हूं कि ये बच्चे अपने दिल की बात अम्बाला की जनता के साथ करें। स्टूडियो में आके हमारे पास 5 या 6 बच्चे एक बार में आ सकते हैं, क्योंकि जो जगह हमारे पास है, ताकि हम उनकी आवाजों को रिकॉर्ड करें, इन्हें भी पता चले कि अम्बाला छावनी आगे बढ़ रहा है। हमारे अम्बाला छावनी का अपना एक सामुदायिक रेडियो है जिसका स्टूडियो वशिष्ठ नगर में है, और आप आइए देखिए एक रेडियो स्टेशन कैसे काम करता है, वहां पर क्या होता है, किस तरीके से हम प्रसारण कर लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरे पास इस ग्रुप में अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, जो वो लड़कियां हैं जो हमारे पास युवतियां हैं, आप अपना हौसला बनाए रखें, सोचिए आपके सामने अनु है, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन में किया है और आज ये रेडियो विदस्ता में कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम करती है। ये हमेशा नारी की बात करती है, नारी की बात करती है, और मैं चाहता हूं कि अपनी बात आप वहां आगे करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आशीर्वाद भी चाहता हूं और आप सभी का प्यार भी चाहता हूं, और शिक्षक को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, आज मुझे इस काबिल समझा, और ये श्रेय मैं अपने माता पिता को और अपने सभी जो जानकार है उनको देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं कहूंगा भारत माता की, आप बोलेंगे जय, भारत माता की
1: जय,
0: जोर से भारत माता की
1: जय,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुत एवं रिकॉर्ड किया अन्नू ने, निर्देशन भरत सुपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
3: ये अम्बाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता सुन रहे हैं आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं किरणी, आपके साथ सुपर हिट पुराने गानों की प्लेलिस्ट के साथ प्रोग्राम रेट्रो हिट्स में। आज के प्रोग्राम का टाइटल है चांद, और आज आपको मैं सुनाती हूं चांद पर आधारित गाने जो आज भी उतने ही खूबसूरत और हर दिल अजीज है। चांद धीरे से मुस्कुराया है, चांद को कौन याद आया है।

0: चांदनी रात में चांद तेरे चेहरे से जलवा दिखाता है, सितारों के जहां सारा उसकी रोशनी में चमकता है।
1: देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न है।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: दिन में चैन नहीं ना होश है, रात में खो गया है चांद भी, देखो बादल के आगोश में।

कितना हसीन चांद सा चेहरा है, उस पे शबाब का रंग गहरा है। खुदा को यकीन ना था वफा पे, तभी चांद पे तारों का पहरा है।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप हमें जरूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7056413010। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम रेट्रो हिट्स एपिसोड 3, पेश किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड, एडिट और निर्देशन रहा भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: Vaheguru Ji Da Khalsa, Vaheguru Ji Di Fateh. आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा आप दा अपना रेडियो आप जी दी आवाज दिल तो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी दा

पहचानिए इस मधुर आवाज को, लता मंगेशकर की सदाबहार आवाज है ये। जी हाँ, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। लता जी के एहतराम में फरिश्ते भी झुककर करते हैं सलाम।

गीता की आवाज रूहों को ताजगी बख्शती है। जहां एक तरफ ताज महल प्यार मोहब्बत की जिंदा मिसाल है, वहीं लता की सुरीली आवाज दुनिया का आठवां अजूबा है। 28 सितंबर सन 1929 को लता का जन्म हुआ इंदौर में। पली बड़ी और खेली इंदौर की ही गलियों में।

शुरुआती दिनों में लता ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन लता जी के अभिनय का दौर ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और अभिनय तरक कर आपने संगीत की दुनिया में

लता मंगेशकर के पिता का नाम दीननाथ मंगेशकर था और माँ माई। लता की तीन बहनें मीना, उषा, आशा और भाई हृदयनाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया से पहले से ही जुड़े हुए थे। परिवार में लता बड़ी बहन है। लता बचपन से ही कुंदलाल सहगल की गायकी से मुतासिर रही है। लता ने 13 साल की उम्र में मराठी फिल्म किटी हसाल में एक गीत गाया, पर किन्हीं कारणों से इस गाने को फिल्म में शामिल नहीं किया, जिसका मलाल आज भी लता को है।

फिर सन 1950 से लता ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने संगीतकार अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद, एसडी बर्मन, सी रामचंद्र, हेमंत कुमार और खयाम से लेकर रवि, सज्जाद हुसैन, रोशन, कल्याण जी, आनंद जी, वसंत देसाई, सुधीर फड़के, हंसराज बहल, मदन मोहन और उषा खन्ना के साथ खुश असलूबी से काम किया।

फिल्म बेचू बावरा, मुगले आजम, कोहिनूर, आग, आह, चोरी चोरी, श्री 420, सजा, हाउस नंबर 44 और देवदास जैसी मकबूल फिल्मों के गाने गाकर ये साबित कर दिया कि लता सुरीली आवाज की मलिका है। कुछ एक निजी कारणों से संगीतकार एस टी बर्मन के साथ सन 1957 से सन 1960 तक आपने काम करना बंद कर दिया। लता मंगेशकर को फिल्म मधुमती के एक गाने के लिए आचार्य परदेसी सन 1958 में फिल्म फेयर अवार्ड से पहली बार नवाजा गया।

हजाज के दशक में संगीतकार सी रामचंद्र के साथ लता ने फिल्म अनारकली, अलबेला, आशा, पहली झलक, आजाद और अमरदीप में बेहतरीन गाने गाकर सामीन से वाहवाही लूटी। इसके अलावा 50 के ही दशक में मौसीकार मदन मोहन के साथ फिल्म अदालत, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया में आपने अपने फन का बखूबी मुजाहिरा किया।

इतने सन 1960 और सन 1961 62 में फिल्म मुगले आजम का गाना प्यार किया तो डरना क्या, दिल अपना और प्रीत पराई से अजीब दास्तां है ये, अल्लाह तेरो नाम। फिल्म कहीं दीप जले कहीं दिल और 20 साल बाद में गाने गाकर लोगों के दिलों पे राज किया। इसके अलावा प्रदीप का लिखा श्रीराम चंद्र की तर्ज पर ए मेरे वतन के लोगों गीत को गाकर उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को रोने पर मजबूर भी किया।

लता मंगेशकर को 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवार्ड 2 बार लता ने हासिल किया। इन 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड लता की झोली में आ गया। भारत सरकार ने 1968 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और इसी साल राजीव गांधी अवार्ड और इसके अलावा 2001 में नूर जहां अवार्ड से लता मंगेशकर को नवाजा। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्मों में लता ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। इसके अलावा लता जी ने यश चोपड़ा की कंपनी यशराज फिल्म्स के बैनर तले लगभग हर फिल्म में काम किया। कहा यह भी जाता है कि फिल्म एक्ट्रेस मधुबाला के लिए सिर्फ लता ही आवाज देती रही। मधुबाला फिल्म साइन करने से पहले ये जरूर शर्त रखती थी कि मेरे लिए लता जी ही गाए। ये जुनून था मधुबाला का

फिल्मों की कामयाबी के लिए लता के गाए हुए गीतों की अहम भूमिका होती थी, चाहे वो फिल्म अनपढ़, जहां आरा, गाइड, मेरा साया, वो कौन थी, अभिमान, अभिलाषा, जीवल थी, प्रेम पुजारी, शर्मिली या पाकीज़ा हो। सन 1972 में मीना कुमारी की आखिरी फिल्म पाकीज़ा के लिए लता ने गुलाम मोहम्मद के साथ काम

लता मंगेशकर ने 1953 से 1990 तक 4 फिल्मों का निर्माण किया। 1953 में मराठी फिल्म वादाल, 1953 में ही हिंदी फिल्म झांझर, 1955 में फिल्म कंचन और 1990 में फिल्म लेकिन। लता को फोटोग्राफी का शौक है। जहां भी कोई अच्छी या दिल को छू लेने वाली तस्वीर मिली, उसे अपने कैमरे में कैद करती है। कुछ नए संगीतकारों में ए.आर. रहमान, शिवहरी, राम लक्ष्मण, जतिन ललित के साथ काम करके लता अपने आप को भाग्यशाली मानती है। खासतौर पे ए.आर. रहमान के साथ काम करके उनको सुकून मिलता है। कहती है ए.आर. रहमान नई पीढ़ी के सुलझे हुए संगीतकार हैं। फने मुस्यकी में आला मकाम हासिल करने के बावजूद लता ने नए कलाकारों के साथ काम करने में कभी गुरेज नहीं किया। लता के बारे में जितना भी कहें बहुत कम है। लता खुद एक संगीत का खजाना है। कुदरत की तरफ से इस कायनात पर एक नायाब तोहफा, एक ऐसी तख्लीक जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01:04। मीठी सी मुस्कान और ढेर सारे सुरों के साथ मैं आपका हमनवा भरत सोपोरी हाजिर हूं आपके चाहते स्टेशन रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अब ढलती रात के साथ इस सुहाने कारवां को यही ठहराव देने का पल आ गया है। सुरों और बातों की इस शाम को समेटने से पहले आइए एक बार फिर जुटते हैं आज 12 अगस्त 2026 के ऐतिहासिक और खास पहलुओं के साथ। श्रोताओं, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर आसमान के तारों तक बेहद यादगार रहा। पहला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, आज हमने दुनिया भर के युवाओं की ऊर्जा, उनके नए विचारों और देश के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को सलाम किया। युवा ही हमारे आने वाले कल की असली पहचान है, पर इसका एक और भी प्रारूप है हमारे देश में, खास करके झारखंड में। जो हमारे युवा है वो अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, पर उनकी बात अभी नहीं सुनी जाती है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी समस्या का समाधान होगा। दूसरा, विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे, आज का दिन जंगल के सबसे समझदार और विशाल का ये जीव हाथी के संरक्षण और उनकी सुरक्षा का संकल्प लेने का दिन रहा। तीसरा, हरियाली अमावस्या यानी श्रावणी अमावस्या, सावन मास की ये पावन अमावस्या पितृ तर्पण, दान पुण्य और सबसे बढ़कर प्रकृति की सेवा के लिए जानी जाती है। आज देश भर में लोगों ने पौधे लगाकर धरती को हरा भरा बनाने का संदेश भी दिया। पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर इक्लिप्स, आज खगोल विज्ञान प्रेमियों के लिए आज का दिन खास रहा, जब आसमान में पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय नजारा देखने को मिला। ये थे आज के दिन के खास मौके और जानकारी, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज के हमारे कार्यक्रम पसंद आए होंगे। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो हम अभी कुछ समय के बाद आपको नोट कराएंगे। हर दिन आपके लिए लाता हूं कुछ पंक्तियां जो आपके नाम करता हूं, और आज भी लाया हूं पंक्तियां, और आज की पंक्तियां यूं हैं, युवाओं का जोश रहे प्रकृति का श्रृंगार बना रहे, युवाओं का जोश रहे प्रकृति का श्रृंगार बना रहे, हर दिल में आस्था और अपनों का प्यार बना रहे, वितस्ता की पावन धारा सी बहती रहे ये जिंदगानी, वितस्ता की पावन धारा सी बहती रहे ये जिंदगानी। कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर, जब तक नया सवेरा खिली धूप लाए। जी हां दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर, जब तक नया सवेरा खिली धूप ले आए। तो ये था आज का जानकारी जो हमने आप तक लाई, और आइए आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 13 अगस्त 2026 थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत। 7:05 पर होगा कार्यक्रम पहलू और गीत, एपिसोड 12 पेश करेंगे आर जी किरणी। और 8:30 आप सुनेंगे पॉजिटिव स्टोरी एपिसोड 10, और कल की कड़ी है उपेक्षित, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 आप सुनेंगे मिले जुले गीतों का कार्यक्रम एपिसोड 6, शीर्षक होगा आस पर जीना, पेश करेंगे रमेश मरहटा। 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6, हमारे साथ होंगे कविताओं के माध्यम से मीना भट्ट सिद्धार्थ, कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी, और संगीत की सभा जारी रहेगी। 2 बजे आप सुनेंगे साइबर अपराध अलर्ट एपिसोड, 6 बजे भक्ति संगीत, और 6:30 शाम में गजल, और 7 बजे सुनहरे पल एपिसोड 6, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुनहरे, माफ कीजिएगा सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा, और कल की कड़ी है शाम के साए।
ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी जो मैं आपके लिए लाया था ये टीम रेडियो वितस्ता में हमारे कैजुअल अनाउंसर अन्नु ने तैयार कर रखी थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है कि आज का ये पूरा सफर आपके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़े जा रहा होगा। अब अपने दोस्त और साथी भरत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आपका अपना चाहिता स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। हंसते रहिए, पौधे लगाइए, युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा दीजिए और अपनों से प्यार बांटते रहिए। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।